0: याज्ञा करम है सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गैलवीम सैलसु मैनव मैं की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपटले बेवा आमेन
1: कथा करन्न दुरकथनांक 0.77 32.65 133

0: ज्ञानांगेद पुत्र अनांगेद शुद्धात्म्यानांगेद आमेन
1: आमेन।
0: अबगे स्वामी वने जेसुस क्रिस्तुन महान सेगे वारा प्रसादया देवी प्यानांगे प्रेमया शुद्धात्म्यानांगे सहभागी कमत ओब सियलु देना समग पावतीवा
1: ओब समगद पावतीवा।
0: प्रेमवंतिनी जुमानु स्वामी महंसिगे नामेन ओब सियलु देना आदरेन सादरेन मेम दिव्य पूजा यागेट पिलिगन्ना अतर स्वामी महंसे अपि ओब पसुतैविल्लकट खेंदवनवा मे दिव्य पूजा यागेट वडा सुसुस लेसिन सहभागी वीम संदहा इसे नाम अपिन शुद्ध सभावत स्वामीन वाहन से बलापुरत्वेन में गमन अपि पैमिनति बिनवाद इसे नाम अपिन बहुदे अतपासुवी ति बिनवाद केला पसुतेविली हादवत किन युक्तव अपिन म अपि विमसा बालमु
2: सियल बालते देवियन वाहन से

0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी वंश कुतु सेक, स्वामी वंश उतानु सेक, स्वामी वंश नवत वडिन सेक।
0: एहिं प्यानिनी उन्वांसिगे मरणयात् उत्तानयात् सीपत् कर्मिन् जीवनदायक फूप्यात् गैलवीमदायक कुशलानात् अपि ओबट पुद करमु। ओब हमवे सिटिमिन् ओबट सेवे करन्नट अपि सुदुस्सन् वचनेन सैलकीम गैन

याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाति अनन्तो दिव्येनि मोक्षाम्पन्न मातावन कन्यमरियतुमन्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतुयुक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहिकरन ओतुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसु मेनव। मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहसे उदिसाम अपट लेबेवा। आमेन।